0: ओ मैं करांगा।
1: फिर सिंगन को मैं नह मारूं,
0: गां वास्ते मैं नहीं सिंगा नू मारदा।
1: जे राखो तुम सास हमारो,
0: जे मेरे स्वा

0: पंथ ओ संत स्वरूप आ
1: चौ पई उसी खालसे मैं शरण आयो।
0: नवाबे बेनती करदा के मैं खालसे पंथ दी शरण आया।
1: चहियत है कछ परचा लायो।
0: इस करके खालसा जी मेरे उते कृपा करो।

तुमरी कृपा में कोई ना जानी तुमरा उचे ते ऊचा सगल समग्री तुमरा सूतर

0: एक को नहीं पकोए, करता करे करावे सोए, सदमुए मन मनते मारिया, ठाकरे मन साचे तारिया, अवर न सूजा गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया, अवना सूजा गुर को वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुरठ महला पंजवा, गुर का शब्द रखवारी, चौकी चौ गिरद हमारे, राम नाम लागा जम लज्जाए कर भागा, प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मर निर्मल, पूर्ण पुरख विधाता रहाओ, नानक प्रभ अविनाशी, ताकी सेवना बिरथी जासी, अणद करे तेरे दासा, जा पूर्ण होई आसा। बिलावल महला पंजवा, ताती वाओ ना लगे, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिरद हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई, सतगुर पूरा भेटिया, जिन बणत मनाई, राम नाम औखद दिया, एका लिवलाई रहाओ, राख लिए तन रखन हार, सब ब्याद मिटाई, कौ नान कृपा पई, प्रभय सहाय सलोक, जह साधु गोविंद भजन, कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू नह छुटै, निकट न जाए हो दूत। सलोक महला पंजवा, मन मह चितवो चितवनी, उदम करो ठनीत, हर कीर्तन का आहारो, हर देहो नानक के मीत। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीर्त आखिए, करते का हुई विचारो, तित कर गावो सोहिला, सिमरो सृजनहारो, तुम गावो मेरे निर्भाव का सोहिला, हूँ वार जित सोहिला, सदा सुख होए रहाओ, नित नित जियड़े संभालियन, देखे का देवन हार, तेरे दाने कीमत न पवै, तिस दाते कमण सुमार, संबद साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन असीसड़िया, ज्यों होवै साहिब स्यों मेल, घर कर एहो पहुचा, सदड़े नित पवाना, सदन हारा सिवरियै, नानक से देह आवान, राग आसा महला पहला, छै घर छै गुर छै उपदेश, गौर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय घर करते कीर्त होए, सो घर राख वडाई तोय रहाओ, बिस्या चस्या घड़िया पहरा, तिती मारी माँ हुआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस, राग तनासरी महला पहला, गगन मह थाल राव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, तूह माले आन लो पावन चवरो, करे सगल बनराए फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए पाव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत, पेरी रहाउ सहस्ताव नैन, नान नैन है तोहे काओ, सहस मूर्त ननायक तोही, सहस पद बिमल नान एक पद गंध बेन, सहस्ताव गंधेव चल तमोही, सम जोत जोत है सोए, तिहद चानन सम चानन होए, गुर साखी जोत।

प्रगट होए, ज्योत सुभावै सो आरती होए। हर चरण कबल वक्र अंध लोहबित मनो, अन दिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देह नानक सारंकाओ। होए जाते तेरे नाए वासा, राग गौड़ी पूर्बी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हरले मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाउ। साकत हर साध ना जानिया, तिने अंतर होमे कंडा हे। ज्यों ज्यों चले चुबै दुख पावै, जम काल सहे सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण भाव खंडा हे। अवनासी पुरख पाया परमेश्वर, बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्बी महला पंजवा, करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, इहां खाड़ चलो हर लाहा, आगै बसन सुहेला। औद घटै दिन सरै नारे, मन गुरमिल काज सुवारे रहाउ। इहो संसार बेकार संसे, महे तरहो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पी आवै इहो रस, आकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो, हर गुर तेह मने बसेरा। निज घर महल पावो सुख सहजे, बहोर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बिदाते, शरदा मन की पू। नानक दास एह सुख, मोको कार संतन की तू। अंतर जामी पुरख शरदा मन की पू। नानक दास एह सुख मांग, मोको कार संतन की तू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आगे अरदास जियो पिंड, कौ नानक साहब कोई नौ ना जाने मेरा। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू समराओ, श्री हर आए श्री हर किशन ते आईया, जिस दिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर, नौन दयावै धाई, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान तरके। बोलो जी वाहेगुरु। हे निमाणिया दे माण, नीताणिया दे तान, नी ओटिया दी ओट। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, आप जी दे पावन पवित्र चरणा विच अरदास बेनती है। आप जी दा कोटान कोट शुकर है, जिन्हां ने अमृत वेले तो खुले दर्शन दिदारे देख के संगतां नूं निहाल कीता। दीवाना दी समाप्ति तो बाद आप जी दे पवित्र सरूप दी सेवा करदिआं, सोला साहिब बाणी दे पाठ करदिआं, बेअंत भुल्लां बख्श देना जी। हुण कृपा करो अपने निज अस्थाना ते विराजमान हो के संगतां नूं खुशियां बख्शो। अमृत वेले दा जागना बख्शना, अमृत वेले खुले दर्शन दे दारे दे के निहाल करना जी। सुख होवे नाम चित आवै, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणी सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ।

जिन हर नाम हर नाम जिन नानक सत गौरा तिन हर पूज जिथा जाए बह मेरा सो तान सुहावा।

माह ना कोई, जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना। नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाना। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवै नानक जे को आपा जाने। अगै गया ना सोहै, पाताला पाताल लख आगास आगास। ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बात, सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक तात। लेखा

पत पवड़िया चढ़िए हुए कीस, सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस।

नाथे समस्ति विपुते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र प्राणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षीय परमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवे सुतर्मे

दयालं अशेदी अपे दियनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं प्रभु हैं अजू हैं देश हैं पेश हैं पुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ती निदाने नमस्त्वं निरनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व रंगे नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धिं निवासी चरपट छंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं।

हमेशुल सलाम है, समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है, कि हुस्नुल चिराग है, कि कामल करीम है, कि राज करीम है, कि रोजी दहंद है, कि राज करहंद है, करीमुल कमाल है, कि सुनुल जमाल है, गरीबुल खराज है, गरीबुल नवाज है, हरीफुल सिकन है, हरासुल फकन है, कलंकंग प्रणास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, कि साहिब किरा है, के नरकंग प्रणास है, बहशतुल निवास है, के सरबुल गवन है, हमेशतुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परंग परम ईस है, समस्तुल अदीस है, देशुल अलेख है, हमेशुल अभेख है, जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल है, के जुरत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के मित्तो सुभाष है, के अजब स्वरूप है, के मित्तो विभूत है, के मित्तो पसा पता, के अमित्तो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, के अमित्तो अपंग है, मदपार छंद त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल तुल मुदाम अंश जंग आसन अभंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित तर तुरास अजान बाहु एकै सदाहु ओंकार आद कथनी अनाद खलखंड ख्याल।

अन टुट भंडार अन ठट अपार आडीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वा प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है काल कारण है सर्व अवारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपस्य है सर्वनाश्य है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मांड स है खलखंड स है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथप्पा थप है अकृता कृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी त्रित है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है पपंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे।

पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूते, एक रति बिन एक रति के, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन को जात निवारे, पारी पुजान के भूप भली विध, न्यावत सीस ना जात बिचारे, इते पए तो कहां पए भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे, जीत फिरें सब देश दिशान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे, भूत भविख भवान के भूपत, कौन गने नहीं जात बिचारे, श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, अंत को अंत के ताम सिधारे, तीर्थ नान दया दम दान, सो संजम नेम अनेक बसेख, वेद पुराण कतेव कुरहान, जमीन जमान सबान के पेख, पौन आहार जति जत तहा, पौन आहार जति जत तहार, सब सो विचार हजार को देख, श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक ना लिख, शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह, सो

आयो बास की ओ बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साज कहो सुन लेहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज तरयो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पुछा को

जग श्री भगवान को भेद ना पायो। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कव्यो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो, सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज करदा करिए, सब वैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो अवर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तो जुजू करियो रच्छा, राख लेहो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

पल मो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै।

असंभ ताका मूढ़ चारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कृपहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पैव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा ना जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बौहर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी।

कथ हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने, तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत परम पुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती, जिन मोह मीठा जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तसै विटों जिन मोह मीठा लाया, कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, हो कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरे नाले, साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईए। ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछुताई।

जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले। गुर के चरण हिरदय त्याए अंतरात्म समाले आप छड सदा रह परने गुर बिन अवर न जाने कोई। कह नानक सुनो संतो सो सिख सन।

अंतर्गत होके सत्संग जी अपने नाम नु सुनना करना जियो नाव चक्कर ते सुन सकते हो हिरदा चक्कर जिते दिल दी धड़कन है उत्ते सुन सकते हो कंठ चक्कर जिते गले चो आवाज आती है उत्ते भी सुन सकते हो किसी भी प्राणी ने जोर दे के मस्तक ते ध्यान नहीं लेके जाना जियो नेत्र बंद रखने जियो जिन्ना गुरमुखां नूं शब्द सुनदे आ उन्हां ने शब्दां विच भी ध्यान रखना जियो।

चित चितवो चरणारबिंद ऊंद कवल बिगसांत प्रगट भए आपह गोबिंद नानक संत मतांत पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा

चित चितवो चरण अरबिंद ऊंद कबल बिग शांत जदों मेरा चित उस मालिक वाहेगुरु दे चरणा कमलां दे नाल जुड़ गया गुरु दे उपदेश नाल जुड़ गया ऊंद कबल बिग शांत मेरे मन का भांडा जिहड़ा मुद्दा होया पिया सी जिहड़ा सारी दिहाड़ी गलती सोचता सी माया का प्रभाव दूर हो गया खेड़े विच आ गया आनंद बन गया

गुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा सात संगत जी, अपार कृपा मेहरामत बख्शिश तरस कीता है गरीब निवास जी ने। पावन पवित्र मुकदस गोद विच बैठन दा सुभाग सबना नूं बख्शिश कीता है। तह दिल तो धन्नवादी हाँ ज्ञानी प्रगट सिंह जी मोगे वालियां दे, जो लड़ीवार पावन गुरबाणी दी कथा विचार राही आप संगतां नूं निहाल कर रहे सन। अगले समय वास्ते बेनती करां हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब भाई हरपाल सिंह जी आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन सरवण करवाउणगे। होइयां सरबत भुल्लां दी आप जी ने कृपा करके खिमा बख्शणी, जोड़ियां विच बिठाई रखना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

प्रभ पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी, जिन्हां दे पावन पवित्र चरणा अंदर आनंद कार्ज की आरंभता की अरदास होई है, सच्चे पातशाह ने हुक्मनामा बख्शिश किया है। हुण भाई साहब जी पल्ले दा शब्द पढ़नगे। बेनती है बेटी दे परिवार नूं, ओ बेटी नूं बेटे दा पल्ला फड़ाउण, उस तों बाद फिर लावां दा पाठ शुरू होवेगा। आओ बड़े प्यार नाल पल्ले दा शब्द सरवण करिए।

हर विखह राम हदूरे, हर आत्म राम पसारिया स्वामी, सर्ब रहया पार पूरे, अंतर बाहर हर प्रभ एको, मिल हर जन मंगल गाए, जन नानक दूजी लाभ चलाए, अनहद शब्द बजाए।

मन चौ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया वडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना वडभागी पाया हर कथिए अकथ कहानी हिरदय हर हर हर धुन उपजे हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै हर उपजै मन बैराग जियो जन नानक बोलै तीजी लावै

0: मन सहज भया हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलया सुभाई, गुरमुख मिलया सुभाई। एहो मन
1: हर मन तन मीठा
0: लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया मेरे प्रभ पहाया।

हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हिरदय नाम विगासी। जन नानक बोलै चौथी लावै, हर पाया प्रभ अवनासी। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हिरदय नाम विगासी। जन नानक बोलै चौथी लावै, हर पाया प्रभ अवनासी। हाँ जी।

जिहवा एक कवन गुण कहिया, बेशमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन्ही लहिया। रहाउ कोट पराध हमारे खंडो, अनेक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरदर खावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, रखो।

लवा पिछले गुनाह बख्शो, लवा पिछले हाँ लवा पिछले गुनाह बख्शो, लवा पिछले गुनाह।

बिसर नाहीं कबहु हिए ते एह बेद मन में पावो गौरपुरा पेट्यो वड भागी

कर एहन सहज दर्शन परसे जन्म मरण होवे सिफत नूर अरसहो कुरसहो तुद डिठे सच्चे मल जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा सिर साहांद जिस पास बैठे आ सबना दा जिस पास बैठे आ सबना दा